ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 23 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर ओकिनावा में मंगलवार को ओकिनावा संग्राम की समाप्ति के 81 वर्ष पूरे होने पर स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस संग्राम में 2,00,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ओकिनावा में हर साल 23 जून को इतोमान शहर के शांति स्मारक उद्यान में स्मृति दिवस आयोजित किया जाता है। ओकिनावा प्रीफेक्चर इस दिन को तत्कालीन शाही सेना के संगठित युद्ध की समाप्ति के रूप में देखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में हुई इस जमीनी लड़ाई में प्रीफेक्चर के हर 4 में से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस संग्राम की यादें बयां कर सकने वाले उत्तरजीवियों की संख्या हर साल घटती जा रही है। ओकिनावा स्थित एक विचार मंच का अनुमान है कि प्रीफेक्चर में उत्तरजीवियों की संख्या 8% से भी कम रह गई है। लोग युद्ध की यादों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के तरीके तलाश रहे हैं। उत्तरजीवियों के परिजनों ने उनकी कहानियां साझा करने का विकल्प चुना है और शिक्षक छात्रों को अपने स्थानीय इतिहास तथा पारिवारिक अनुभव जानने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में सोमवार के कारोबार के दौरान जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले कुछ समय के लिए 161.93 तक लुढ़क गई। इससे पहले येन ने यह स्तर 2024 में छुआ था, जब वो लगभग 40 वर्षों के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचा था। येन के मुकाबले डॉलर की लिवाली बढ़ने का कारण ये अटकलें रहीं कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ये इस चिंता पर आधारित है कि तेल की उच्च कीमतें अमरीका में महंगाई को फिर से भड़का सकती हैं। जापान की वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच रात को बातचीत होने की खबरें सामने आने के बाद येन में कुछ सुधार हुआ। इससे ये अटकलें तेज हुईं कि जापानी अधिकारी शायद मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेंगे। मंगलवार सुबह टोक्यो में डॉलर के मुकाबले येन लगभग 161.5 के आसपास रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार डॉलर की व्यापक खरीद को देखते हुए येन को सहारा देने वाले किसी भी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर संदेह है। हालांकि कारोबारी सतर्क हैं, क्योंकि जापानी मुद्रा दिसंबर 1986 के स्तर के करीब पहुंच रही है। इजरायली सेना गाजा के आवासीय क्षेत्रों में अंदर तक घुसती जा रही है और ऐसे में गाजा निवासी मानवीय परिस्थितियों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी इजरायली सेना न केवल गाजा में मौजूद है, बल्कि अब लगभग 60% गाजा उसके नियंत्रण में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मई में हमास पर दबाव बनाने के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 70% करने का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने नियंत्रित क्षेत्र को तथाकथित पीली रेखा से सीमांकित किया है। मानवीय मामलों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समन्वय कार्यालय ने शनिवार को बताया कि उत्तरी गाजा शहर में कंक्रीट के पीले ब्लॉक रखे गए हैं। अरब मीडिया केंद्रों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप ये पीली रेखा सैकड़ों मीटर अंदर आ गई है, जिससे कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। निवासियों का कहना है कि आसपास के इलाकों में गोलाबारी और ड्रोन हमले हो रहे थे और अचानक आधी रात को बिना किसी चेतावनी के ये ब्लॉक रख दिए गए।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व महापौर एंडी बर्नहम ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता के रूप में उनकी जगह लेने की दावेदारी पेश की है। मीडिया खबरों के अनुसार बर्नहम के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। सोमवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से स्टार्मर ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। अब लेबर पार्टी 9 जुलाई को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकारना शुरू करेगी। स्टार्मर के निर्णय को एक बदलाव की शुरुआत बताते हुए बर्नहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस प्रक्रिया में खुद को आगे रखेंगे। बर्नहम 2001 से लेकर 16 वर्षों तक सांसद रह चुके हैं। जापान के थल आत्मरक्षा बल GSDF और अमरीकी मरीन कोर के सैनिकों ने दक्षिण पश्चिमी जापान के खागोशिमा प्रीफेक्चर के एक दूर दराज के द्वीप पर ड्रोन विमान से रात में खुफिया जानकारी एकत्र करने का अभ्यास किया है। ये अभ्यास सोमवार रात से मंगलवार तक तोकुनोशिमा द्वीप पर किया गया। ये जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्यूशू में पिछले सप्ताह शनिवार से अगले सप्ताह मंगलवार तक होने वाले अमरीकी मरीन और GSDF के संयुक्त अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में लगभग 9,600 कर्मी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जापान के दूरस्थ द्वीपों की रक्षा के लिए समन्वय करना है। अमरीकी समकक्षों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जापानी कर्मियों ने लॉन्च पैड से ड्रोन विमान स्कैन ईगल उड़ाया। नौवहन कर रहे जहाजों के बारे में लगभग 30 मिनट तक जानकारी एकत्र करने वाले इस ड्रोन को बाद में एक विशेष उपकरण का उपयोग करके वापस हासिल किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष सहित दुनिया भर में लड़ाई में उपयोग किए जाने के बाद से ड्रोन विमान ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने देश की तटीय रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में ड्रोन विमानों को तैनात करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में लगभग 100 अरब येन यानी करीब 61.9 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। चीबा प्रीफेक्चर के चीबा शहर के एक पार्क में भूमि की प्राचीन परत में पाए गए बीजों से उगे कमल के फूल अब पूरे शबाब पर हैं। ओगा लोटस नामक फूलों के बीज 1951 में चीबा शहर में 2000 साल पुरानी भू परत में पाए गए थे। शहर के चीबा पार्क में 900 वर्ग मीटर के तालाब में ये कमल उगाए जा रहे हैं। पार्क में एक समय में अधिकतम 700 कमल के फूल खिले होंगे।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।